न जाए, न ओह मरै न होवै सो गौ दिंदा रहै न चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होवा ना को होए। जिबड़ आप तिबड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात, खसम वसार है ते कम जातो। नानक नावै बाज सनातो, राव गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पासे। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगासे। मेरे मीत गुरदेवो मोको, राम नाम प्रगासे। गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग बड़े रेजन, हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिला तृप्तस, है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पासो। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जी वास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हरड़ सपाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चितवै उद्यम, जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगै कर तरिया। मेरी माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया। उडे उडिया वैसा कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया।

जिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवे आ जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सालाहन तुजी हर अनक अनेक अनंता।

अनेक पढ़ाए बहुसिमरत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझी बड़े अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ

पट पट की जाने। जाऊद कर करा करता राव प्रजा धरत तब देह पारा। जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जिति बदन श्रेष्ठ सब ताड़ आप अपनी बोझ उचारा। तुम सब ही ते रहतन रालम ओ जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव।

कहु सिमट भयो शंकर इकाठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आदि जुगादि स्वरूप संयम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेस करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है। रिच्छा होता ही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरई तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद कर्म सब होई दुढ़ छा छु सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा काल फास देता हूँ बारा। जिन नर नाम तिहारू कहा दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाद लिहो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई। दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता। श्री हस्तोज जपै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़ेल। सुनै गुंग जो जाहे सो रस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट नाऊ तिन नर के रहै हो जो जा की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रव वारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र पख्याने त्रिय त्रित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आफजू दोहरा।

आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वाधाइया राग रतन परवार प्रियां शब्द गा बणाइया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

0: शुद्ध तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है जिन्हां ने अपार मेहर करके अमृत वेले पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाहे बख्शे गरीब नवाज शब्द पढ़िया सुनिया लिखे लाउण गुरु चरणां नाल बन आवे। आओ सरवण कलेड़ी वार गुर शब्द विचार ज्ञानिया दर्शन सिंह जी होरां पासों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभाए राम राजे हम भूल बिगाड़ा दिन सरात हर लाज रखाए हम बार गुर पिता हैं दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया

बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कह हो हरिया पाई कर लिखन तय पाई अरुत सुहाय वर्ण त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाय साधु सुख दहलती।

0: के न माए उधारे
1: मन के पुनः चरण करत नहीं तरै
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख गनेरे
1: सगल सृष्ट को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत हो।

0: की जय।
1: ये प्रसाद अरूपर सुख बसै,
0: सूत प्रात मीत बनता संग हसै।
1: ये प्रसाद पीवै शीतल जला,
0: सुखदाई पवन पावक अमूला।
1: ये प्रसाद भोगै सबरसा,
0: सगल समग्री संग।

0: तो समझे पूरा
1: काम सुन पद गावे गुंग
0: जतन करे तो भी सुरपांग
1: पिंगल पर्वत पर पवन
0: नहीं हो तुआ उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बिनती करे
0: नानक तुमरी कृपा तरे
1: संग सहाय सो आवे न चीत
0: जो बहराई ता से प्रीत
1: बलुआ के ग्रे पीतर बस
0: अनद केल माया रंग रस
1: जुड़ कर मन मने प्रतीत
0: काल न आवे मुड़े चीत
1: बैर क्रोध काम क्रोध मोह
0: झूठ विकार महालोभ त्रोह
1: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
0: नानक राख ले।

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सवाया
1: मिथ्या हमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोबन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रात अस्ति असो वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
0: आखिर भगत साध की सरना
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन
1: मिथ्या हस्त पर दर्द कोहिरे
0: मिथ्या नेत्र पीखत त्रय
1: रूपाद रचना भोजन अनुस्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन

0: पाए
1: गोविंद भजन में बृति सब काम
0: ज्यो कृपन के निरारथ दाम
1: तन तन तेजन जे कट बस्यो हर नाउ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत अवर का शबर कमा

0: मंतिस्मृत को हालस की जय
1: प्रसाद अस्वस्थ अस्वारी
0: मंतिस प्रभ को कबू ना बिसारी
1: प्रसाद बाग मिलकत ना
0: राख प्रोई प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बनत बनाई
0: उठत बैठ सत्य से ते आई
1: सत्य आए जो एक अलख है
0: नानक तेरी रख है
1: प्रसाद करे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: ये प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभ को सास सास सितारी
1: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: ये प्रसाद तेरी निकी जात
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: ये प्रसाद तेरी पात्र है
0: गुर प्रसाद नानक जा

0: गोचर मिला
1: साथ के संचता पर फुला
0: साथ के संग आवे बस पंचा
1: साथ संग अमृत रस पुंचा
0: साथ संग हुए सब की रेना
1: साथ के संग मनोहर बैन
0: साथ के संग नाकत हूं तावे
1: साथ संग अस्थित मन पावे
0: साथ के संग माया ती भिन्न
1: साथ संग नानक प्रभु सो परसान
0: साथ संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साथ संग के सिउ नहीं बैर
1: साथ के संग ना दीन्दा पैर
0: साध के संग ना

0: साथ प्रभु बने आई।
1: साध के संग ना कब हूँ तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बसती अगोचर लह,
0: साधु के संग अजर सहे।
1: साध के संग बसे थान यूच,
0: साधु के संग महल पहुँचे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान,
0: साधु के कुर्बान।
1: साध के संग सब कुल उदार,
0: संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सुतन पावे,
0: जिस तन ते सब को वरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध के संग शोभा सुर देवा।
1: साधु के संग पाप लाए न,
0: साध संग अमृत गुण गाए न।
1: साध के संग सर्व थान गम,
0: साध के संग सफल जनम।
1: साध के संग नहीं कश काल,
0: दर्शन पेट त होत निहाल।
1: साध के संग कुलुकत हरे,
0: साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग इहा उहा सुहिला,
0: साध संग बिसरत हर मेला।
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग न बिरता जावे।
1: और ब्रह्म साध रिद बसे,
0: नानक उदरे साध सुन रसे।
1: साध के संग सुनो हर नाओ,
0: साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग ना मन ते बिसरे,
0: संग सर पर निस्तरे।
1: साध के संग लगे परमीठा,
0: साधु के संग कट कट लीठा।
1: साध संग पहिया आज्ञाकारी,
0: साध संगत पही हमारी।
1: साध के संग

0: करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की साबु परमया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।

0: ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता।
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का

0: मिथ्यानाई रसना परस
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: पात्र रूप न पिखे नेत्र
1: साथ किटल संत संग हे
0: करना सुना काऊ की निंदा
1: साते जाने आपस को मंदा
0: प्रसाद विखिया पर हर
1: मन की वासना मन ते टर
0: इंद्रिय जित पांच दोख तेरा तो
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: दैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विषम की माया ते हो पिन
0: कर्म करत हुवे ने कर्म
1: वैष्णो का निर्मल तरम
0: काऊ फल की इच्छा नहीं बस
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवर नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मानते

0: हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध
1: राम नाम आत्म में सोदे
0: राम नाम सारस पीवे
1: पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बूझे मूल
1: सुख में जाने स्थूल
0: सौ वर्णा को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा आदेश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: वर्णा में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गत होए।

0: तैसा उस सोग
1: अनंत नहीं वियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंक तैसा राजान
0: जोवर ताए साईं जुगत
1: नानक पुरख कहिए जी।

0: निरत करै बौ पात
1: सोए रहे दिन रात
0: कबहु महाक्रोध विकराल
1: सर्पी हो त्रवाल
0: कबहु होए बह बड़ राजा
1: भिखारी नीच का साजा
0: कबहु आप कीरत मैं आवे
1: पला पला कहावे
0: ज्यो प्रभ राखे तिव ही रह
1: प्रसाद नानक सच कहे
0: कबहु होए पंडित करे बखियान

0: जाना न जो बनवंत
1: सोविष्टा का जंत
0: आप को कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे बोजोन प्रमावे
0: तन पुम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: पर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नारकिया मुख आगे सुख पावे
0: तनवंता होई कर गरबावे
1: समान के संग न जावे
0: बोल अस्कर मान खूब

0: सुख
1: सुपन
0: मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ पागे किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार।

0: संत के दुख निवारण प्रष्ट होए
1: कृपाल कृपा जी करे
0: नानक संत संग निंदक बीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग जोले
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिग जोन किरमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को चले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे
0: नानक संत पावे ता ओ बिगत पाए
1: संत का निंदक मात ताई
0: संत का निंदक खिंडिक न पाए
1: संत का निंदक माह त्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।

0: दुख में दुख
1: नानक संत पावेता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लागे
1: संत के दुखी को सब त्यागे
0: संत का दुखी महंकारी
1: संत का दुखी सदा भिखारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख ना सुख पे डरे
0: संत के दुखी को नाही ठाओ
1: नानक संत पावेता ले मिलाए
0: संत का दुखी अद बीच से टूटे
1: संत का दुखी के काज न पहुंचे
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर तीत होता
1: सांस बिना मिटता किलो था
0: संत के दुखी की जड़ किशना है
1: अपन बीज आपे ही खाए
0: संत के दुखी को और न रखना हार
1: संत पावे ताले उहार
0: संत का दुखी ओ बिल लाए
1: ज्यों जल भी ओन मछली तड़फड़ाए
0: संत का

0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर दरगे नानक उजल मथा
0: भड़पागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो कर विचार
1: से तनवंत गने संसार
0: मंतन बोले मुख मंतन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान
1: जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक तिने निरंजन जान्या
0: गुरु प्रसाद आपन आप सुझे
1: इसकी जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत
1: सब रोग त्यो हर जन रहत
0: अनदिन कीर्तन केवल व्याख्यान
1: ग्रस्त मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: इसकी कटिए जन की फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ चित मन आवे
1: जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सा तैसा दृष्टाया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोधत सोधत सोधत सीजया
1: गुर प्रसाद तत सब बुझया
0: जब देखो तब सब किछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई स्थूल
0: न किछ जन्म न किछ मर
1: अपन चात आप ही करे
0: आमन जाऊं दृष्ट अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल मैं आप
1: अनित जगत रस्थाप उठाप
0: अब नासी नाही किछ खंड
1: तार तारे हो ब्रह्मंड
0: अलख अपे पुरख प्रताप
1: आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सगल संसार उदरे तिन मंत
0: प्रभ के सेवक सगल उधार

0: गंडन हार गोपाल
1: सरब जी आपे प्रतिपाल
0: सगल की चिंता जिस मन मा है
1: बिरथा कोई ना है
0: रेमन मेरे सदा हर जाप
1: अब नासी प्रभु आपे आप
0: आपन किया कछु ना होए
1: जैसा प्राणी लोचे कोए
0: इस बिन नाही तेरा किच काम
1: गत नानक जाप एक हर नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह
1: जो सगल कर सो है।

0: चितार
1: जो कुछ करे सोई सुखमान
0: भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बस्त आई तेरे संग
0: लपट रयो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पासे ती कर जाए
1: जिस वक्र को लैन तो आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अभिमान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल
1: लाद खेप संत संग चाल
0: अगर त्याग बिखिया जंजाल
1: तन तन कह सब कोए पार बिरला वापार
0: नानकता के सद बलिहारे
1: चरण साध के तोय तोय पियो
0: अरब साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान
0: साधु पर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा सबड भागी पाई है
0: संहर कीर्तन गाइए
1: अनक बिगनते साधु रख है ओट गई संत दरियाया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जीवालन हार
0: रुखे को देवता दार
1: सर्व निधान जाकी दृष्टि मा है
0: पूर्व लिखे का लेना पाए
1: सब किस उत्तिस्काव करना जोग
0: तिस बिंदु सर हुआ न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: साते उस निर्मल करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुरति गुर की प्रतीत
0: जन आवे हर प्रवचित
1: भगत भगत सुनिए ते लोए
0: जाके हृदय को होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दृश्य साचा आकाश
0: सच वर्ते सा

0: जाए।
1: ऊंच नीच तिस के स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान।
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेट कर एक रंग।
1: नाना भित की नो विस्तार
0: प्रभ अविनाशी एक अंकार।
1: नाना चलत करे किन माहे
0: पूर्यो पूरन सब ठाए।
1: नाना विद कर गणत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाए।
1: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हर नाओ।
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड।
1: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान।
1: नाम के तारे आगास पाताल
0: नाम के तारे सगल आकार।
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
0: नाम के संग उदरे संश्रवण।
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए।
1: रूप सत जा का सत स्थान
2: पुरख सत केवल प्रदान।
1: करतूत सत सत जा की बाणी
0: सत पुरख सब माए समानी।
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत।
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब पली।
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई।
1: सत बचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश।
1: सत नृत्य बुझे जे कोए
0: नाम जपता की गत होए।
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत।
1: जिसकी सृष्ट सुकरण हार
0: अवर न बूझ करत विचार।
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया।
1: विषमन विषम पाए विषमाद
0: जिन बुझिया तिस आया स्वाद।
1: प्रभ के रंग राच जन रहे
0: गुर के बचन पदार्थ लहे।
1: ओए दाते कटन हार
0: जाके संग तरह संसार
1: जन का सेवक सो बड़ भागी।

0: चरण सत सत परसन हार,
1: पूजा सत सत सेवदार,
0: दर्शन सत सत पेखन हार,
1: नाम सत सत त्यावन हार,
0: आप सत सत सब तारी,
1: आपे गुण कारी,
0: शब्द सत सत प्रवक्ता,
1: सुरत सत सत जस सुनता,
0: बुजन हार को सत सब सोहे,
1: नानक सत सत प्रभ सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या,
1: करन करावन दिन मूल पछानिया,
0: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया,
1: ज्ञान से मन प्रगटाया,
0: पहते निरपो होए बसाना,
1: जिसते उपजा तिस माए समाना,
0: बस्त माहेले बस्त गड़ाई,
1: आको पिन न कहना जाई,
0: बुझे बुझन हार विवेक,
1: नारायण मिले नानक एक,
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत,
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत,
0: ठाकुर को सेवक जान संग,
1: प्रभु का सेवक नाम कै रंग,
0: सेवक को प्रपालन हारा।

0: बारंबार बार प्रभ जपिय
1: अमृते मंत्र पिय
0: नाम रतन जिन गुण कपाया
1: जिसके शरण नहीं दृष्टाया
0: नाम तन नाम रूप रंग
1: नामो सुखर नाम का संग
0: नाम रस जो जन तृप्ताने
1: मंत्र नाम में नाम समाने
0: उठत बैठत सोवत
1: नाम कहो नानक जन के सदकाम
0: बोलो जस जेवा दिन रात
1: प्रभ अपने जन की निधात
0: करे भगत आत्म कह चाहे
1: प्रभु अपने से रहे समाये
0: जो होवा हो वह सो जाने
1: प्रभु अपने का हुक्म पहचाने
0: इसकी महिमा कौन बखानो
1: इसका गुण का एक न जानो
0: आठ पहर प्रभु से हजूरे
1: कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले
1: मन तन अपना तिन जन ले
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सर्व थोक का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पावे
1: इसके दरसा पाप मिटावे
0: और सयान पसगली छाड़
1: तिस जन की तू

0: हरे।
1: सतगुरु सिख की करे प्रतपाल,
0: सेवक गुर सदा दयाल,
1: सिख की गुर दुर्मत मल हिरे,
0: गुर बचनी हर नाम उचरे,
1: सतगुरु सिख के बंधन कट,
0: गुर का सिख विकार ते हटे,
1: सतगुरु सिख को नाम तन दे,
0: गुर का सिख बड़ पागी है,
1: सतगुरु सिख का हलत पलत सवार,
0: नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे,
1: गुर का ग्रह सेवक जोर है,
0: गुर की आज्ञा मन में सहे,
1: वापस को कर कछ न जनावे,
0: हर हर नार दे सत्यावे,
1: मन बेचे सतगुर के पास।

0: गुरु की मतले
1: 20 बिसवे गुरु का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरना
0: अनेक बार गुरु को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: आप नहीं कश परम
1: सह स्यान पलया न जाइये
0: नानक ऐसा गुरु बड़पागी पाइये
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत
0: और सच रंगत निर्मल रीत
1: एकत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर बचन कर्ण आकाने
0: मन संतोख आत्म पतियाने
1: पूरा गुरु अख्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पेखे हो संत
1: गुण बयंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस ले मिलाए
1: जे बा एक उस्तत अनेक
0: सात पुरख पूरन विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगम गोचर प्राप निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकी कीमत किने न पाए
1: अनुक भगत बंधन नित कर
0: चरण कमल हृदय सिमर
1: सत बलहारी सत गुरे अपने
0: नानक जिस पर

0: अवरो अपाप सब मीत बिसारो
1: चरण कमल हृदय में उतारो
0: करण करण कारण सो प्रप समरत
1: कर गहो नाम हरवत
0: हे तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखो मन माहे
1: सब रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंट उठता है
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख

0: ठंडा हर नाओ
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
0: अबिन से पूर्ण होए आस
1: भगत पाए आत्म प्रकाश
0: तित कर जाए बसे अपनासी
1: कहो नानक काटी जम फांसी
0: तत् विचार कहे जन साचा
1: जन मरे सो का चोका चा
0: आवा गौन मिटे प्रभ से
1: आप शरण गुरुदेव
0: क्यों रतन जन्म का होए उधार
1: हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनेक अपाव न छूटन हारे
1: सिमरत सासत बेद विचारे
0: हर की भगत करो मन लाए
1: मन वंचत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तना
1: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
0: सुत मीत कुटुंब और बंता
1: इनते कहो कवन सनाथा
0: राज रंग माया विस्तार
1: इनते कहो कवन छुटकार
0: अस हस्ती रथ असवारी
1: झूठा दंड चूट पासारी
0: जिन दिए तिस बुझे न बिगाना
1: नाम विसार नानक पछताना
0: गुर की मातून लेहे एयाने
1: भगत बिना ब डूबे सियाने
0: हर की भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखो मन माहे
1: जन्म जन्म के किल बिक जाए
0: आप जपो बरा नाम जपाओ
1: सुनत कहत रहत गत पावो
0: सार पूत सत हर को नाओ
1: सह सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावो तेरी उत्तर समैल
1: बिन जाए हमें बिक फैल
0: वह अचिंत बसे सुख नाल
1: सार स्रास हर नाम समाल
0: चार स्यानप सगली मना
1: सार संग पावे सतना
0: हर पूंजी सच करो व्यवहार
1: सुख दरगे।

0: अनंत
1: मंथन जाप एक भगवंत
0: एको एक एक हरिया
1: पूरन पूर्य प्रव्याप
0: अनक विस्तार बेकते पए
1: एक रात परा शत गए।

0: सार
1: प्रभु की दृष्ट महासुख होए
0: हर रस पावे बिरला कोए
1: जिन चाख्या से जन तृपता ने
0: पूरन पुरख नहीं डोलाने
1: सो पर परे प्रेम रस रंग
0: उपजे चाओ साध के संग
1: परे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रकाश अंदिन लिव लाग
1: मन भागी जपया प्रभु सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी पई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होयो दयाल
0: सेवकीनो सदा निहाल
1: बंधन काट भुकत जन पया
0: जन मरण दुख परम गया
1: तिछ पुनी सरदा सब पूरी
0: प्रभ रिया सत संग हजूरी।

0: जब अकार एक कछ न दृष्टेता
1: पाप उन तब कहते होता,
0: जब तारे आपन सुन सोमार
1: तब बैर विरोह के संग कमात,
0: जब इसका वर्ण चिर न जापत
1: तब भरक शोको किसे व्यापत,
0: जब आपन आप आपार ब्रह्म
1: तब मोह कहां किस होत परम,
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हार न दूजा,
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुकत का किस गणे,
0: जब एक और अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन अवतार,
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: तब से सकत कहो के ठाए,
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तर है
1: तब कवन निडर कवन कर डर,
0: आपन चलत आप करन हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार,
0: अब नासी सुख आपन आसन
1: जन्म मरण को कहां विनाशन,
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की किस होए,
0: जब अभक्त अगोचर प्रभ एका
1: चितर गुप्त किस पूछत लेखा,
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे,
0: आपन आप ही अचर जा
1: नानक आपन रूप आप ही उपर जा,
0: जब जह निर्मल पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता,
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान,
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तह चल चिदर प्रगत को केस,
0: जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे
1: किसे पूप कवन तृप्तावे,
0: कर्ण करावन कर्ण हार
1: नानक करते का नहीं सुमार,
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: कवन मैं भाव मित्र सुत पाई,
0: जब सर्व कला आपे पर बीन
1: वेद कते कहां को चीन,
0: जब अपन आप उड़ता रहे
1: तो सगन अब सगन कहां विचार,
0: जब अपन ऊंच अपन आप नेरा
1: कौन ठाकुर कौन कही है,
0: विस्मन विषम रहे विस्मार
1: नानक अपनी गर जानो आप,
0: जह अचल अछेद भेद समाया
1: किसे व्यापत माया,
0: आपस को आपे आदेश
1: गुण का नाही प्रवेश,
0: जह एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस लागे चिंता,
0: जह आपन आप तियारा
1: कौन कथे कौन सुनने हारा,
0: बहु बेअंत ऊचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा,
0: जय आप रचियो पर पंच अकार
1: गुण में कीनो विस्तार,
0: आप उनते पई कहावत
1: तो नरक को स्वर्ग मचावत,
0: आल जाल माया जंजाल
1: हमें मोह परम पै पार,
0: सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार कियो बखियान,
0: अपन खेल आप कर देख
1: खेल संकोचे तो नानक एक,
0: जय अभिक्त भगत कया
1: पसरे पासार संत प्रताप,
0: पैतनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी,
0: आपे कौतक करे अनंत चोज
1: आपे रस को जन निर्जोग,
0: जिस पावे तिस आपन नाय लावे
1: जिस पावे तिस खेल खिलावे,
0: बेसुमार अथा
1: अगणित अतुल्य।

0: मत
1: पूरी अमृत जाके दृष्टा
0: उदर श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: दर्शन सुंदर हर रूप
1: तन सेवा सेवक परवान
0: जामी पुरख प्रदान
1: मन बसे सोहोत निहाल।

0: त्रिजो बार अनंत
1: भगवंत
0: माहे अकाश पयाल
1: सर्वलोक पूरन प्रतिपाल
0: बंधन पर्वत पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: मोर पानी बसंतर माहे
1: चार कुंड से समाये
0: ते पेन नहीं गोठा
1: गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण समर्थ में देखा
1: सूर नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: पढ़ो।

0: अनजान खेल बनाया।
1: आज्ञाकारी की नी माया,
0: सबके मत अल्पत हो रहा।
1: जो किछ कहना सो आपे कहे,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए।
1: नानक जा पावे ताले समाए,
0: ते होए सो नाही बुरा।
1: उरे कहो किने कछ करा,
0: आप भला करतूत अत नीकी।
1: आपे जाने अपने जी की,
0: आप साथ आरी सब साच।
1: पूत पूत आपन संग राच,
0: गतमत कही न जाए।
1: दूसर होए ता सो जी पाए,
0: उसका किया सब परवान।
1: गुर प्रसाद नानक यो जान,
0: जो जाने ते सदा सुख होए।
1: आप मिलाए लय प्रभ सोए,
0: धनवंत कुलवंत पतवंत।
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: धन धन धन जने आया।
1: जिस प्रसाद सब जगत त्राया,
0: जाने आवन का ए सुआओ।
1: जन के संग चित आवे।

0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: समरोगो
0: बंदा
1: त्यागो तरंग
0: संत जना की तूर मन मांग
1: बेनती कर
0: सागर करो
1: तन के पर ले भंडार
0: पूरे नमस्कार
1: सहज आनंद
0: संग पंच परमानंद
1: हर उदारो जियो
0: गोविंद अमृत।